0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

0: ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: श्रोते हो रेनबो फंडेच्या उत्तरार्धात आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत।
2: फेसबुक इन स्काय, व्हाट्सअप इन लाइफ, मान मोड काम, इथेनो आराम, सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फंडे, रेनबो फंडे,
3: रेनबो फंडे, रेनबो फंडे,
2: म्यूजिकल साथ, रियल लाइफ बात, सिनेमा नाटक, भटकंती खास, स्टार्ट अप योर डे विथ

0: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या, 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि पुणे केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या मराठी बातम्या आपण ऐकू शकता 8:30 वाजता.
1: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें.

0: pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में ये अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
5: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and

रही, जहां भी होंगे बस फोन हो इंटरनेट हो और हम एकदम लाइव साथ हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनाजा। अभी से लेकर सुबह 11 बजे तक का साथ रहेगा हमारा। सबसे पहले हमेशा की तरह मस्त मुंबई और उसके बाद 2 मिनट के आपको समाचारों के अपडेट और फिर नमस्ते भारत।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अतरंगी रे जिंदगी, सच कितनी ज्यादा अतरंगी है ना। हाथों से कब रेत की तरह क्या फिसल जाए किसे खबर है। समेट के रखना चाहते हैं और जितना रखना चाहते हैं उतना ही फिसलते जाती है जिंदगी। अब बदमाश तो है, अब ये तो हमें पता है, आपको भी और मुझे भी, साथ मिलके लेकिन जीना इसी का नाम है। आज वैसे बुधवार है तो मुंबई लोकल में अगर इस वक्त हो तो क्या हाल है, क्या किस्से कहानियां हैं वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि आज की थीम वही होती है 8657661 पर। और ये जो गाना था अरिजीत सिंह साशा तिरुपति की आवाज़ में आपने सुना, अरशाद कामिल ने लिखा है, और सच सारा अली खान के साथ हम भी थोड़ा सा उसी दुनिया में चले गए। हमारी चकाचक गर्ल का वैसे आज जन्मदिन है, यानी कि अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, या फिर आजकल जैसे बोलते हैं जन्मोत्सव, है ना, अपना उत्सव भी मना ही ले। दूसरों के साथ साथ अगर आपका भी जन्मदिन है तो वेरी हैप्पी बर्थडे। सुबह की शुरुआत मुंबई के मस्तानों, कैसे हो? पूरी दुनिया से वैसे लोग हमें सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मुंबई के बारे में भी उनको बताएंगे कि लोकल में यहाँ क्या कुछ नहीं होता। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूँ स्वीट हार्ट कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस भी। तो चले हमारी स्वीट हार्ट का स्वागत करते हैं और उसके बाद बातें यूं ही जारी रहेंगी आपकी आरजे मृणमयी मनजा के साथ। सुनते रहो 107.1 FM रेनबो मुंबई।

0: देव नेगी की आवाज, अमित त्रिवेदी के कॉम्पोजिशन, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान दिखे थे पर्दे पे इसी गाने के साथ। अब बस्ती में आपकी खास दिल की चहेती आ जाए तो वो भी किससे कहानियां वैसे हो ही जाती हैं, और कभी कभी लोकल में भी कोई ऐसा खास या कोई होती है जिसे देखकर ही बाकी का जो बुधवार है वो मिड वीक में भी आपका सब अच्छा अच्छा जाता है।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz.

दार साहब ने लिखा है और ये है 107.1 म्यूजिकली योर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा और सुबह सुबह मस्त मुंबई में हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम सभी के जज्बात कभी कभी एक जैसे से होते हैं, खास तौर पे युवाओं की बात करें तो चले आप और हम भी कूद जाते हैं उसमें, दिल से तो सब लोग हैं ही युवा और वैसे भी ज़्यादातर युवाओं का ही ये देश है। आपको पता ही है हमारी आबादी कितनी है, जनसंख्या, इतने सारे यंगस्टर्स हैं हमारे पास। तो दुनिया के अलग अलग कोनों में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है वैसे, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियों में समान आकांक्षाएं है ना। ये वैसे थीम है लेकिन इस साल का, पर बात एकदम सही है। किसी भी सुविधा में आप हो या असुविधा में हो, कभी कभी उम्र के हिसाब से जितना भी आपका कल्चर अलग होता है, आपके कहीं ना कहीं सपने, आपकी पढ़ाई, आपकी परेशानियाँ, आपकी उम्मीदें, जो ख्वाब आप देखते हैं, वो सब थोड़े बहुत एक जैसे होते हैं। भविष्य को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके, मतलब कितना कुछ होता है ना जिंदगी में, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो हम सबको जोड़ता है, एक समानता है। अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शंस में, पता है क्या होता है, कई बार लोग लिख रहे होते हैं कि ये हमारे साथ होता है, छोटी छोटी बातें, पता है जैसे वो दादी नानी का वो सिलाई का डब्बा नहीं होता, वो एक पता नहीं किसी ज़माने का एक कुकीज़ का डब्बा रहा होगा और उसके बाद उसमें सिलाई का सामान होगा। अब हिंदुस्तानियों को लगता है कि ये तो बस हमारे यहाँ ही होता है, और अफ्रीकन्स जो होते हैं उन्हें लगता है सिर्फ हमारे यहाँ होता है, मेक्सिकन्स को लगता है सिर्फ हमारे यहाँ होता है, मतलब ऐसे पूरी दुनिया में हर देशवासी जो है लिख रहे थे उसमें कि क्या बात कर रहे हो, मतलब कोई ओरिजिनल एक्सपीरियंस है ही नहीं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी हो रहा है। पर्यावरण को लेकर भी जितने हम जूझ रहे हैं उतने दूसरे भी जूझते हैं, तो है ये युवा।

युवा फिल्म का ये गाना सुन रहे हो, यार रहमान का है ये म्यूजिक 107.1 म्यूजिकली योर्स पर। महबूब ने इसके लिरिक्स लिखे हुए हैं, साथ आपने सुना सुनीता सारथी और तन्वी को भी। और 9:13 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मस्त मुंबई सुन रहे हो। और जाहिर सी बात है आजकल की जनरेशन जो पीढ़ी होती है उनका थोड़ा ह्यूमर भी मज़ेदार सा है, ऐसे ही मज़े मज़े में बोल देते हैं कि हम अपनी बर्बादी की ओर मतलब खुशी खुशी बढ़ रहे हैं। लाइफ को लेने का नज़रिया अगर ज़रा सा हल्का हो जाए तो कभी कभी बड़े से बड़ा स्ट्रेस भी हैंडल हो जाता है ना, संभाल लेते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
6: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।

0: आवारापन फिल्म का गाना मुस्तफा जाहिद की आवाज में सईद क्वादरी और इस वक्त सुन रहे हो
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
0: वैसे युवा पूरी दुनिया की पर्यावरण को लेके भी बहुत ज़्यादा सोचती है और बात सही है। पता है पूरी दुनिया जो है सिर्फ हमारी तो है नहीं, हमारे साथ साथ जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठा रहते हैं जानवरों के साथ पक्षियों के साथ सबका इकट्ठा ही साथ होता है। यूँ तो साथी की ज़रूरत किसे नहीं होती और जितना तो ये दिल टूटता है जितने ब्रेकअप्स होते हैं जितने तबाह बर्बाद होते हो तड़पते हम सब है ना, तो उसी में कभी कभी एक ऐसा साथी मिलता है जिस वजह से बार बार ये फिल्में बनी है। आपको बताऊं हाथी मेरे साथी 1971 में भी बनी थी, हाथी मेरे साथी 2021 में भी बनी थी, 2021 वाली में अलग अलग भाषाओं में भी बनी थी, तमिल में बनी थी फिर कादन नाम से, फिर अरण्य तेलुगु में बनी थी, राणा दगुबती थे उसमें। और यही जब कॉरपोरेशंस की बात आती है इस तरह की कहानी थी कि अपने प्यारे से साथी यानी अपने हाथी के लिए आप लड़ रहे हो, मैं और मेरा हाथी वो भी है। तो ऐसे अलग अलग फिल्मों में कई बार ये कहानियाँ आती हैं और हर बार ये जो विषय है हमें पता है कि ये लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे, हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच रहते हैं और सब कुछ इकट्ठा को एग्जिस्ट करने की बात जो होती है ना कि साथ साथ रहें एक दूसरे का सहारा बने, वो हो नहीं पाता क्योंकि हम लोग तो उन्हीं की जगहों पे अपने घर बनाते चले जाते हैं। तो आज है विश्व हाथी दिवस, क्या सोचते हो इसके बारे में? 8657661071 बांटो मेरे साथ। और तब तक ये जो हल्के हल्के से भीगे हैं, कल रात भी पूरी बारिश चल रही थी मुंबई में, तो ये गाना आ रहा है आपके पास

0: अभिजीत राव की आवाज में ये गाना सुन रहे थे गरिमा उनके साथ, ये द गर्लफ्रेंड का गाना था। और इस वक्त हम बात कर रहे थे, मैंने भी आपसे पूछा था, आपकी बातें भी एकदम सही हैं, हाथी सिर्फ हमारे साथी तो होते नहीं, उनके साथ साथ ही बेहद ही दिलचस्प प्रकार के प्राणी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, मतलब जितना आप उनको क्रेडिट नहीं देते उससे ज़्यादा। और समझदार तो है ही, बुद्धिमान है, सामाजिक जीव है, और इनके साथ खतरा या जो टकराव मानव के साथ बनता चला जाता है, अवैध जो शिकार होते हैं, उनके प्राकृतिक घर जो छीन लिए जाते हैं, इन्हीं बातों पर जरा सी जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन है। तो इसीलिए बातचीत होनी ज़रूरी है, ताकि जिम्मेदारी से जो हम भागते रहते हैं, मतलब बहुत कुछ होता रहता है, उसका सामना नहीं करना चाहते, मैं भी समझती हूँ, अब क्या करें, अपनी चिंताएं भी बहुत सारी होती है, पर इतने प्यारे से हैं सच, जिस तरह का हम गाना सुन रहे थे, इनके बगैर रह भी नहीं सकते, इनको बचाना भी कहीं ना कहीं हमारा ही फर्ज है, क्योंकि इनकी जो क्षति हमने की है वो भी हम ही ने की है इंसानों ने।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज, म्यूजिकली योर्स।
2: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आदित्य रखारी की आवाज में सुन रहे थे साहिबा।
1: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: मस्त मुंबई में मस्त होने के लिए मुंबई लोकल की जो सवारी होती है, खास तौर पे बारिशों की बात हो रही थी, नींदे वींदे आई ना, अगर ऐसा हाल है उसके बाद एक दिन और हफ्ते के बीचों बीच छुट्टी से कई दूर बुधवार के दिन जब आना होता है, आय हाय। मुंबई ना दूर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप यहाँ भाग दौड़ में रोज़ाना इतनी स्पीड से भाग रहे होते हो ना, कभी कभी लोकल से भी ज़्यादा स्पीड आपकी हो जाती है रफ्तार। तो ऐसा है, जो लोग हमें पूरी दुनिया से सुन रहे हैं, सभी के मैसेजेस में देख रही हूँ, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई साउथ से, तमिलनाडु से, अलग अलग जगह से आप हमें सुन रहे हो पूरी दुनिया से। तो ऐसा है कि यहाँ मुंबई ना एक स्टेशन है दादर, वैसे जहाँ पूरी मुंबई सुबह सुबह इकट्ठा हो जाती है, और वहाँ पर क्योंकि जंक्शन है मेन, तो अलग अलग जगह पे जाना होता है, और हर बार जब कभी कोई नया होता है, पुरानों का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आप ब्रिज जो भी चढ़ते हो वो गलत ही होता है, इसलिए खुद दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ब्रिज का मतलब पता है क्या, वो भी आपको समझाती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इतने सारे होते हैं, तो आपको एक से दूसरे में जाने के लिए पहले ऊपर जाना होता है, फिर नीचे आना होता है, तो ये सब भी रहता है। पूरा सुबह का वर्कआउट ना मुंबई लोकल में, किससे कहानियाँ, ये सबकी कॉमन है, ये तो होता ही होता है। और यहाँ वैसे आप डिजिटल टिकट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक परेशानी होती है कि अगर आप ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए तो आप नहीं कर सकते, तो वो जो एक कश्मकश, एक जो धड़कने तेज हो जाती है कि पहले तो आपको रिक्शा नहीं मिल रही होगी ट्रेन के लिए, और जैसे आपको मिल जाएगी या फिर आपको बस मिल जाएगी, आप पहुंच जाओगे, वो आप सोच रहे हो, फिर आपको याद आता है कि हाय टिकट तो सिर्फ 1-2 किलोमीटर के बीच ही कर सकते हैं, और वो तो हमने की नहीं, वो हम पहुंचे नहीं। मतलब जिन लोगों का पास नहीं होता उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग बार बार करते हैं तो वो हाल समाचार है। वहीं अब तो लोकल छोड़ मेट्रो में भी वही हाल है, कभी कभी नेटवर्क भी नहीं रहता, जिनके पास कार्ड रहता है वो सही रहते हैं, नहीं तो जिंदगी के खेओस में राउडी बेबी वाला ही हाल होता है।

श्रद्धा मिश्र नक्श अजीज मारीटू का ये गाना सुन रहे हो और डांस सुबह सुबह जरूरी हो जाता है जब वैसे भी आंखें नहीं खुल रही होती है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि काम तो करना है। 9:40 हो चुके हैं और जहां भी फंसे हो इसी जो एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा, वो हम भेजेंगे आपके पास ना।

समय जब आप मुंबई लोकल में फंसे होंगे, फिर तो जो होता है भाई साहब। एक तो दादर स्टेशन की बात कर रहे थे, वहां एक बार पता है क्या हुआ था, यूं गए कि मैं तो चलो घुस गई, अब जनरल में घुस गई क्योंकि वही मिला मुझे, वो भी दादर, वो भी नए नए। सोचो ये भीड़ ऐसी होती है ना जहां पे आप खुद नहीं उतरते हो, आपको लोग उतरवा देते हैं, और मेरा वो स्टॉप था भी नहीं, मुझे वहां उतरना भी नहीं था, लेकिन लोगों को लगा कि मैं नहीं उतर पा रही हूँ, और इतने अच्छे थे सब लोग, सब कहने लगे अरे मैडम को उतरने दो, मैडम को उतरने दो, मैडम को उतरने दो। तो इतनी जो वो एक बेचैनी हो जाती है सब में, यहाँ की भाषा में जो कहते हैं जल्दबाजी, शीघ्र जो होता है इसको बोलते हैं घाई, तो इतनी तेजी से लोगों ने मुझे वहां उतरवाने की कोशिश की है, और मुझे कहना पड़ा कि नहीं बाबा मुझे नहीं उतरना, तो मैडम को चढ़ने दो, मैडम को चढ़ने दो, वो हो गया, मतलब मैं नीचे गई भी और लोगों के समूह ने, पूरा जो समंदर होता है लोगों का, उन्होंने मुझे वापस अंदर भी ले लिया। तो ये सही था, कभी कभी बचते बचाते पहुंच जाते हैं, ऐसी कुछ यादें, कुछ किस्से, कुछ कहानियां हो जाती हैं। वहीं पानी में भी एक बार यूं ट्रेन जो है हमारी मुंबई लोकल अटक गई एक जगह पे, कि बस उसके बाद पता ही नहीं है आगे जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा। पर गाने अगर साथ हों तो, वैसे पूरे डब्बे में उस दिन अकेली थी मैं, शाम को

0: 107.1 FM Rainbow Mumbai, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मुंबई का सबसे पहला FM चैनल।

19 साल के बाद पता चल रहा है कि ये गाना गॉड के लिए, खुदा, भगवान, ऊपर वाला अलग अलग नजरिए चीजों को देखने के। कभी कभी रोमांटिक गाने जो होते हैं वो हमारे महबूब के साथ साथ उस ऊपर वाले के लिए भी हो सकते हैं, खास तौर पे अब क्योंकि इमरान हाशमी फीवर, आवारापन टू की बातें जो चलती रहती हैं, तो ये आवारापन का गाना आपने सुना मुस्तफ़ा साहिद की आवाज़ में। और अभी जो गाना आया है, जख्मी परिंदा है तू फिर भी जिंदा है तू, ये उसी का जवाब जैसे। वैसे ये गाना क्या कम है, मेरे ही पांव, खुद मेरी बेड़ियां और जख्म फिर हुआ हरा, ये तो हम सबके लिए सच में, हम कह रहे थे ना अभी अभी अलग अलग जगहों पे रहते हैं लेकिन परिस्थितियां और जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं और जो हमारी किस्मत कई बार एकदम एक जैसी होती है, ऐसा ही कोई गाना मिल जाए ना जो बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप अकेले फंस भी गए हो तो थोड़ा सा एक ऐसा लगता है ना कि गाने के साथ, म्यूजिक के साथ थोड़ा सा सहारा है, अकेलापन नहीं महसूस होता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ट्रेन तो रुक गई मुंबई लोकल। अब ये किस्सा ऐसा है कि शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था और मुझे ये भी नहीं पता कि शायद बांद्रा के आसपास कहीं रुकी है, अब यहाँ से निकल के कुछ और लेके जाऊँ, बाहर क्या हाल है वो भी नहीं पता, परिस्थिति क्या होगी, पानी ज़्यादा भरा है नहीं भरा है। आपको तो पता है तेरा मेरा रिश्ता पुराना मुंबई और बारिश का कुछ ज़्यादा ही है, और ये जो पानी और वाटर लॉगिंग जो होती है, जल भरने वाला जो समस्या है, इससे भी हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, बस ऊपर वाले की ही तरह। तो मैं आखिरकार नहीं गई, नहीं उतरी और वहीं रही पूरे विश्वास के साथ कि सब ठीक हो जाएगा, बस अपने ईयरफोन्स और गाने और उसी के साथ थोड़ा सा डांस भी कर लिया, किसी को पता तो चलेगा नहीं, है ना, अकेले एकदम। कभी कभी जितनी भी ज़्यादा परेशानी हो उसमें थोड़ा सा हम खुश हो जाते हैं तो फिर अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं।

है कौन होता है पता है ना, राह पे राही कौन मिला तो फिर किनारों की फिक्र कहा। ये होते हमारे जो मुंबई लोकल चलाते हैं, उनसे जब हम पूछ लेते हैं, क्योंकि पहले ही डब्बे में मैं थी,

आखिरी पता नहीं, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई, लेकिन मेरे जैसे बहुत होंगे। पर हाँ, आप जब नज़दीक होते हो, करीब होते हो और आप एकदम अटके अटके फंसे हुए होते हो, तो ज़रा हटके ज़रा बच के मन तो करता ही है कि पूछ लिया जाए। तो ऐसे ही बस दरवाजे से निकल के मैंने थोड़ा सा पूछा कि जाएंगे ना, और उन्होंने कह दिया कि हाँ जाएंगे। तो बस फिर क्या है, फिर तो कभी ना कभी लोकल चलनी ही है और आप पहुँच ही जाने वाले हो, है ना। इसी बात पे किनारों तक आपको भी पहुंचाती हूँ। उसके बाद समाचारों के 2 मिनट के अपडेट्स और फिर नमस्ते भारत। सुनते रहो अपनी आरजे मृणमयी मना जा के साथ 107.1।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने कल अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित में सहायक होगा। मुंबई के विले पार्ले में कल रात एक इमारत के 11वीं मंजिल पर आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रात करीब 12:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। कोलंबिया में आए भूकंप में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस सदी में

0: कोलंबिया में आया सबसे विनाशकारी भूकंप था। AIFF सुपर कप विजेता फुटबॉल क्लब गोवा आज तुर्कमेनिस्तान के अर्कादाग में AFC चैंपियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेज के लिए होने वाले सिंगल लेग क्वालिफाइंग मैच में तुर्कमेनिस्तान के फुटबॉल क्लब अर्कादाग का सामना करेगा। FC गोवा ने पिछले सीजन में AIFF सुपर कप जीतकर ACAL2 प्लेऑफ में जगह बनाई है। इसी के साथ समाचार समाप्त।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी कि DRM पर भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। जहां कहीं भी होंगे, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जहां आपके पास है इंटरनेट, वहां स्ट्रीम कर सकते हैं एकदम लाइव यही कार्यक्रम। और सुबह मस्त मुंबई के बाद समाचारों के 2 मिनट के अपडेट्स के बाद अब वक्त है जाने का नमस्ते भारत में। तो 10 से लेकर 11 बजे रोजाना हर दिन सुनते हो नमस्ते भारत। तो कैसे हो भारत वो भी बताओ मुझे। 8656601071 पर 8657661071। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा।

0: ये गाना सुन रहे हो द ताज स्टोरी से कैलाश खैर की आवाज में विक्रम और राहुल देवनाथ के साथ। हमारी वीरता अगर मुंबई की बात करें तो अक्सर घूम फिर कर हम इस कहानी पर तो आ ही जाते हैं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
0: आपके भेजे हुए संदेश भी मैं पढ़ रही हूँ। जिस प्रकार आपने लिखा है, अभी जब थोड़ी देर पहले मस्त मुंबई में हमारी बात हो रही थी तो वैद्य ही लिखती हैं कि मैं सीनियर हूँ और हमारे पुराने दिनों में लोकल ट्रेन्स में जब हम इस प्रकार से अटक जाते थे स्टेशन्स के बीच में तो वॉकमैन हुआ करता था जिसकी सहायता से हम अपना समय फिर काट लेते थे। ट्रेन 9 बजे गए और फिर घर 3 बजे या फिर जितना भी समय हो कहीं भी फंस जाए गाने का साथ रहता था। और इसी तरह 107.1 FM के साथ भी रिश्ता पुराना है। वैसे तेरा मेरा रिश्ता पुराना जो हम सुन रहे थे आवारापन का, उसमें भी आप देखोगे सोशल मीडिया में आजकल जिस प्रकार युवाओं की भी आज बात हो रही थी क्योंकि उन्हीं का दिन है आज, तो 19 साल बाद भी जब जवाब मिलता है तो ऐसे मज़े मज़े के जोक्स हम करते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो सुनते ही हैं, हमारी जो अर्जी होती है वो पहुंचती ही है। और जो एकदम ही बच्चे हैं जो अभी अभी 19 साल के हुए वो मज़े मज़े में लिखे जा रहे कि हमने तो ये गाना पहले नहीं सुना था, बहुत ही पुराना है लेकिन पहली बार सुन रहे और तभी पता चल गया। चलो एक और गाने इस प्रकार आपको लेके चलती हूँ कृष्णा कॉटेज की तरफ। वैसे हर घर तिरंगा भी चल रहा है तो आप शामिल हुए हैं या नहीं मुझे बताओ 8657661071 पर। उससे पहले ये गाना देवदास से

0: कविता कृष्णमूर्ति की मीठी सी आवाज। सुन रहे हो 107.1 FM रेनबो मुंबई पर।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। कैसे हो? मैंने आपसे पूछा था कि हर घर तिरंगा, ये जो चल रहा है, क्योंकि आज है 12 अगस्त, आपको पता ही है 15 अगस्त से बहुत ही कम दूर है। हमेशा तुमको चाह हिंदुस्तान, वो तो है ही है। आपका जवाब मैं पढ़ती हूँ। प्रमोद

हमें लिखते हैं, दीदी हमारी घर घर ही तिरंगा लगा रहे हैं, हम तो ज़रूर लगाएंगे तिरंगा हमारे घर पर, तो आप शामिल हो सकते हैं अगर इनकी तरह आप भी करना चाहते हैं तो। हर घर तिरंगा .com तो है ही, वहाँ जाकर जब आप स्टेप्स लेते हो, जो अलग अलग चीज़ें आपको करनी है, आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल भरना है, देश या जो आपका राज्य है वो आपकी डिटेल्स आपको भर देनी है, एक सेल्फी लेनी है अपने प्यारे से तिरंगे के साथ, और आपने तिरंगा जो लहराया है अपने घर में उसकी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या पूरा वीडियो भी जो है वो चौथा स्टेप है, आप उसे रख सकते हो अपनी स्मृति के हिसाब से।

बिल्कुल साथ है हम लोग, और हमारी बातें होते होते ही 1,67,740,000 लोगों ने अपनी सेल्फी अपलोड कर ली है हर घर तिरंगा में, अपने हमारे ही देश के तिरंगे के साथ। तो आपने किया कि नहीं किया? और ऐसा नहीं है कि आपको बस जाके 15 अगस्त को ही करना है, पहले भी कर सकते हो, देख रहे हो ना कितने सारे कर चुके हैं। और अगर इतने साल ये चल रहा होता है, कई बार खबर नहीं पहुंचती है, मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी दुनिया में एकदम खोए खोए रहते हैं, तो उन्हें बताना भी तो फ़र्ज़ है हमारा। तो अगर आपको अभी भी ये डाउट है कि तिरंगा जो है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि सम्मान के साथ हमें लहराना है, हम कैसे कर सकते हैं, दिन में करेंगे तो फिर शायद रात को निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप हर घर तिरंगा वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि आप दिन रात लगाकर रख सकते हो पूरे गर्व के साथ, और जो सही प्रक्रिया होती है लहराने की वो भी दी गई है, तो वो भी मिल जाएगा आपको।

आज बुधवार है तो आज नमस्ते भारत की तो थीम यही है, शान से रहेंगे। महिला और बाल जगत वैसे बच्चों को शामिल करने का बहुत ही अच्छा उपाय हर घर तिरंगा में। सोशल मीडिया आपको पता ही है, सब उसी में लगे रहते हैं। तो हैशटैग हर घर तिरंगा या हैशटैग हर घर तिरंगा 2026 ये ना भूल जाना, तभी तो सब लोग इकट्ठा शामिल होंगे ना।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है मंगल पांडे को। आज 21 साल वैसे पूरे हो रहे हैं, आज ही के दिन रिलीज हुई थी। इतने साल हो जाते हैं, कहाँ समय चला जाता है पता ही नहीं चलता है ना। वैसे मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनजा। मोहर लिखते हैं कि हिंदुस्तान हमें भारत कहते हैं, ये सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और सुबह से हमारे साथ हैं। हर घर तिरंगा लगाने और लहराने की जानकारी भी बहुत अच्छी लगी है। तो बिल्कुल सभी के मुझे अपडेट्स आ रहे हैं कि हम लगाते हैं, कोई इंदौर से है, कोई सांता क्रूज से है, आप महेश में देख रही हूँ। दीपा ने लिखा हुआ है कि ये देशभक्ति जताने का उत्तम अभियान है। हमारे साथ पूरे देशवासियों ने स्वयं स्फूर्ति से जो है इसे अभियान का पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक इकट्ठा होने का जो एक एहसास होता है ना, कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है। और मुझे पूरा सर्टिफिकेट तक भेज दिया है आपने, आपका भी देख रही हूँ मैं, कोला से आपने भेजा है ये। राम प्रजापति हमें तिरंगा खुद भेज रहे हैं और विजेंद्र तो मतलब बदमाशी आप देख ही लो, चाय के कप्स वैसे मुझे इंदौर से भी आए हुए हैं और बिहार से भी, लेकिन ये डिजिटल वाला व्हाट्सएप पे स्टिकर भेज के जो आप बोल रहे हो ना मस्ती में कि इसके पैसे नहीं लेंगे, वाह वाह हमारे श्रोता होते हैं भाई मस्ती खोर एकदम। मस्त मुंबई वैसे समाप्त हो चुका है, अभी आप सुन रहे हो नमस्ते भारत। तो नमस्ते भारत में बुधवार के दिन वैसे भी हम बात करते हैं हमारे महिला और बाल जगत के बारे में। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम सब अपने काम में इतने खो जाते हैं, मशरूफ हो जाते हैं कि अपने ऊपर तो ध्यान दे नहीं पाते। और हम हमारे देश की बात करें, हमारी माँ की, हर घर में जो एक प्यारी सी माँ है उन्हीं को ज़रा सा संभालें, उनके लिए कुछ अच्छा करें, एक प्यारा सा एक मोमेंट बनाएं ताकि बाकी सब कुछ अपने आप ही संवर जाए। वो कहते हैं ना घर की लक्ष्मी खुश हो।

0: म्यूजिक कॉम्पोजिशन संगीतकार एमएम क्रीम हमारी तरह ही एमएम मैं आपके ब्रेन में ही मैनेजर वैसे ये मजेदार इंसान है सही अपना नाम हर बार बदल देते हैं हर गाने में ताकि उनका नाम किसी को पता ना चले वैसे ऑस्कर विनर भी है इसी के चक्कर में बहुत ही प्यारा सा गाना हमने सुना झंडा लहराने वाला आर आर आर फिल्म से
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
0: पुणे से भी है हमारे साथ सुनील सुषमा अनन्या राजवीर गायकवाड पूरा परिवार जुड़े हुए सुबह सुबह आप सभी के मैसेजेस मैंने देखे तो हैं पर सबको शामिल करना थोड़ा सा जो है समय आपको पता ही है ये तो रिक्वेस्ट आवर है नहीं लेकिन फिर भी देखे सभी के हैं अंजू हमेशा की तरह वैदेही हैं दिलीप हैं सुबह से तो ऐसा है कि हर पल की जो अपडेट्स आप मुझे देते रहते हो बहुत ही अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं अगर किसी के साथ बांट ना पाएं तो फिर वो जीवन ही क्या हुआ है ना विश्वास बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं प्रदीप अनंत कृष्णन भी

जाता है। हम भी तो यही चाहते हैं, चले कहीं तो शांति बांट पाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यशवंत अड़मुटे हैं धारा शिव से, और इंदौर से आप थोड़ा सा चाट वाट भी भेज दो ना, ऐसे खाली गुड मॉर्निंग ना भेजा करो अजय। दादर की बात हमारी आज हुई है, उड़ीसा कैसा है ये हमें पूछ रहे हैं, और वंदे मातरम के साथ उन्होंने हमें भेजा हुआ है। हमारे दादर के सभी श्रोता हैं, बाबा उनके साथ हैं, ओंकार काटकर और राम प्रजापति। अभी एक और गाना हम चल रहे हैं, देश वाली माँ से लेकर, कभी कभी दिल बटे सन्नाटा हो जाता है जीवन में, उसी से ये गाना आपके लिए।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज, म्यूजिकली योर्स।
3: म्यूजिकली योर्स मैं आपके साथ हूँ, आपकी आरजे मृन्मयी मनजा। सभी के देखे हैं और जो लोग नाम नहीं लिख रहे हैं उनके मैसेजेस भी मैंने पढ़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे महिला और बाल जगत आज का विषय है, तो ये जो गाना हमने सुना ना, हमारे देश से आगे बढ़ते हुए हमारी अपनी माँ की तरफ भी नहीं समझ पाते कई बार, मतलब सोचो क्या किरदार का जो आर्क हो रहा है, नहीं कितना हम बदल रहे हैं। जहां तारे जमीन पर पे कह रहे थे कि माँ क्या हम इतने बुरे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हो, और

कहीं जा करके हम भी आपको नहीं समझ पाए। बचपन से लेकर बाल जगत में, बचपन से लेकर जब जवानी में जाते हैं, तो कई बार हमारा जो क्रोध है वो चरम सीमा पे होता है, नहीं समझ पाते छोटी छोटी बातों में। हालांकि अब तो बड़े होने के बाद भी होता है, पर जब ये हो जाता है ना, जब हम समझ नहीं पाते, थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, ऐसे समय में ये फिल्म बहुत ही प्यारी है। वैसे माँ बेटी की कहानी, नील बट्टे सन्नाटा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी वैसे ही अपनी माँ को बिल्कुल नहीं समझ पा रही होती है, और अचानक से जब उसे एहसास होता है कि ये तो इतनी कोशिश कर रही है ताकि मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, जो इसके साथ हुआ है मेरे साथ ना हो, तो वो काम वाली बाई होती है उनकी माँ, और वो उन्हें पढ़ाना चाहती हैं और इनसे पढ़ाई होती नहीं है। तो माँ बेटी की बहुत ही स्वीट सी, प्यारी सी, मीठी सी कहानी है, और इसी का वैसे गाना जो हमने पहले भी सुना हुआ है, मैथ्स में डब्बा गुल, जिससे आप भी रिलेट करोगे। बहुत सारे लोग हैं हमारी तरह जिनका मैथ्स तो होता नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत ही बुद्धिमान जिनका सही रहता है, हालांकि उनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, है ना। वैसे भी सुबह से अपने दर्द को पी के मुस्कुरा रहे हैं ना, मुस्कुराते मुस्कुराते ये भी सह लेंगे।

0: इतना गुल है, और खास तौर पे अब डिजिटली यूपीआई की जैसे हम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है कि हम लोग बस दे देते हैं छुट्टा, किसी को सोचना ही नहीं पड़ता कि कितना लौटाना है। वो सिर्फ एक ही समस्या इतनी अच्छी चीज़ की कि थोड़ा सा ना हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं तो कैलकुलेटर फिर ऑन करती हूँ आजकल, इतना बुरा हाल है। एक ज़माने में कभी इतनी डांट खाने के बाद, इतनी शर्मिंदगी के बाद, इतना बुरा करने के बाद एक बार 100 रखा था मैंने, बट अब तो ऐसा लगता है जैसे कि ये इतिहास की बात है जो शायद कभी हुआ ही नहीं था। क्योंकि अब जो हालात है, सच में कितने लौटाने हैं एक तो पहले समझ नहीं आता, और जब आ भी जाता है बात बिगाड़ देते हैं। हमारे मुंबई के रिक्शा वाले, जो जहाँ पे भी आप जाओ, अलग अलग तरह के जो व्यवसायी होते हैं, वो आपको ऐसे नहीं बोलते कि आप 20 लौटा दो, हम 30 देते हैं, फिर ये देना, फिर ये वापस करते। बस वहाँ पे मेरा सच में डब्बा गुल हो जाता है।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

एक मैं और एक तू क्या करे. वैसे मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए, मेरे खानदान में मैथ्स के इतने बड़े बड़े जीनियस हैं कि अब डांट पड़ेगी जो बोल दिया उस पर. चले, अपनी सारी परेशानियाँ जहाँ जहाँ हमारी मात हुई है उस पर भी हंसना चाहिए, है ना, अपने ऊपर भी हंसना चाहिए. और इसी तरह आंटी जी गेट अप एंड डांस, महिला बाल जगत, और मतलब ऐसे थोड़ी ही मर्दों को छोड़ देंगे, बाकी सब लोग खुशी से नाचो, क्योंकि अब समय हो चुका है ब्रेक फ्री का, मेरे जाने का समय. मैं आपकी आरजे मृन्मयी मनजा, अब जो जो रह गए उनके लिए ये गाना आ रहा है, गलती से मिस्टेक. समय यानी घड़ी बता रही है कि आरजे किरण आ रही है आपके पास. समाचार भी सुनोगे ठीक 11 बजे. तो मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, और दुआओं और प्रार्थनाओं में याद रखो.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया है। 6 से 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मुंबई और उपनगरों में आज भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार मुंबई, उपनगरों और आसपास के जिलों में अगले 3 से 4 घंटे के दौरान मध्य बारिश होने की संभावना है। आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि विश्व के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी भारत में रहते हैं, जो देश को हाथी की पारिस्थितिक विरासत का जीवंत प्रतीक बनाता है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।
0: Rainbow 107.1 megahertz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM Rainbow 107.1 megahertz पर। इस समय ठीक 11:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम ब्रेक फ्री का। मैं हूँ RJ किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

इस समय ठीक 11:07 हुए हैं और अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन का ये गाना लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज़ में। तो दोस्तों 9 अक्टूबर 2012 का दिन था। एक 15 साल की लड़की अपनी परीक्षा देने के बाद बस से वापस घर आ रही थी। अचानक एक आदमी बंदूक लेकर आया और उस लड़की पर हमला कर दिया। उसके सर में एक गोली लगी, उसे अस्पताल

पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। कुछ समय बाद जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसे ब्रिटेन ले जाया गया और वहां उसका पूरा इलाज किया गया। उस लड़की की जान बच गई। उस पर गोली सिर्फ इसलिए चलाई गई थी क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी और अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी। ये घटना है पाकिस्तान की स्वात घाटी की। हम किस बहादुर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप समझ गए हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमें जल्द से जल्द इसका जवाब दें। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

इस समय ठीक 11:20 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था कि हम किस बहादुर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप समझ गए हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें, और साथ ही कहा था कि सुनते रहिए एफएम रेनबो भी। तो उसका जवाब हमें दिया है बैंड्रा से राजेंद्र जी और माहिम से गोपाल जी, और साथ ही कांदीवली से कल्पना जी ने सही जवाब दिया है। तो हम बात कर रहे हैं मलाला यूसुफ जई की। जी हाँ, इनका जन्म एक पश्तून परिवार में हुआ था। इनके पिता एक एजुकेशन एक्टिविस्ट थे। इनके पिता का मानना था कि लड़कियों को खूब पढ़ाना चाहिए। मलाला अपने पिता के विचारों से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपने पिता के मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। 2011 में उन्हें पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार भी मिला।

जी हाँ, समय ठीक 11:27 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने सही उत्तर दिया था, उनका नाम है राकेश माथुर पुणे से। जी हाँ, तो दोस्तों आज 12 अगस्त है और ठीक 3 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इस साल हम 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं और ये 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग अपने घरों, अपनी दुकानों और अपने संस्थानों पर तिरंगा झंडा फहराएं और देश प्रेम की भावना का समर्थन करें। वैसे इस साल हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। आप अपने घर या अपने ऑफिस कहीं पर भी तिरंगा लगाएं, अपने तिरंगे के साथ एक खूबसूरत सेल्फी लें और इस सेल्फी को सरकारी पोर्टल हर घर तिरंगा.com पर अपलोड करें और अपनी जानकारी साझा करें। इसके बाद इसी पोर्टल से आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है।

11:36 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और हम बात कर रहे हैं मलाला यूसुफजई की। जी हाँ, जब उन पर जानलेवा हमला हुआ तो इसके बाद वो एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन गई। हर तरफ उनके नाम की चर्चा हुई। हर देश की मीडिया ने मलाला पर गोली चलने की घटना को दिखाया और उसकी निंदा की। मलाला का कहना था कि हर लड़की को स्कूल जाना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए, ये उसका अधिकार है। और अगर कोई लड़कियों को स्कूल जाने से रोकता है, मतलब पढ़ने से रोकता है, तो इसका खुलकर विरोध होना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो। मलाला ने जो कहा वो किया, बस उनके इस विरोध की वजह से उन्हें गोली मारी गई।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो जैसा कि हमने कहा कि मलाला को गोली लगी थी, जी हाँ, गोली लगने के बाद ब्रिटेन के एक बड़े अस्पताल में उनका पूरा इलाज हुआ। ठीक होने के बाद मलाला की ज़िंदगी का अब एक ही मकसद था कि उन्हें लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ना है। उन्होंने इसके लिए एक एनजीओ भी बनाया। उनकी ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम है आई एम मलाला। 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस इतने बड़े पुरस्कार को जीतने वाली वो अब तक की सबसे कम उम्र की विजेता हैं। उन्होंने लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और डिग्री की उपाधि हासिल की।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली के प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 4 मिनट के भीतर ही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के तीसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामे के साथ शुरू हुई और आज लगातार 18वें कार्य दिवस पर भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। राज्यसभा में भी हंगामे की वजह से कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि 20 फरवरी 2027 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर वो दोबारा नियुक्ति नहीं चाहेंगे। उन्होंने निदेशक मंडल से उनके उत्तराधिकारी को लेकर फैसला करने को कहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर केंद्र से लोकसभा की सदस्य संख्या को अस्थायी रूप से 543 पर सीमित करने की अपील की। मुख्यमंत्री विजय ने 2029 में होने वाले आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव में कहा कि इसे लोकसभा के मौजूदा 543 सीट के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz Musically yours।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 MHz पर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। मैं हूँ RJ किरणमाला इस समय आपके साथ, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

12:07 हुए हैं और म्यूज़िक कैफ़े प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। जैसे कि हमने बहुत ही खूबसूरत गाना भी आपके लिए प्ले किया, फिल्म प्यार किए जा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो चले सुनते एक और गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म है तुमसा नहीं देखा।

0: समय ठीक 12:13 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक कैफे। तो इस समय बहुत सारे हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं जो लिखते हैं कि बहुत अच्छे गाने प्ले किए हैं और साथ ही प्रमोद चिंचोलकर जी भी हमें सुन रहे हैं, फिरोज सिंगनपुरिया जी भी हैं, साथ ही अशोक पाटिल वर्ली से वो भी हमें सुन रही है, विजेंद्र घटोल अकोला से दीपा पालकर जी और ओंकार काटकर पंडरपुर से हमें सुन रहे हैं, पंकज मोहोर जी भी हमें सुन रहे हैं, अजय साखरे इंदौर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ ही प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी हमें सुन रहे हैं, प्रकाश शिंदे जी और साथ ही राकेश माथुर जी तो सुबह 11 बजे से ही हमें सुन रहे हैं और जवाब भी सही दिया, संजय दर्शन जी भी हमें सुन रहे हैं, मलाड़ से शुभलक्ष्मी मस्टकर ये भी हमें सुन रही है और ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो हमें फ़ोन करके भी हमें कह रहे हैं कि हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, साथ ही उन्हें पुराने गाने बहुत पसंद आते हैं सुनने। तो मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए।
1: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम उमंग।

0: दबदंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
2: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
2: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
2: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
2: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
3: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे, तभी एक दिन
4: अरे दिलीप।
5: हाँ सुभाष।
4: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
5: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
4: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
5: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
4: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
5: तो फिर?
4: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
5: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
4: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
5: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
6: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
4: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
6: Is that right? You black monkey?
5: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
6: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
4: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
6: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
4: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
6: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडरल, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
4: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
6: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
3: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि ICS के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है, इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिले। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
4: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
5: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
4: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
5: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
4: और अपने सुभाष बाबू?
5: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
7: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
4: क्या हुआ सुभाष बाबू?
7: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
3: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939

0: 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
1: आओ, अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चलें।
2: चलिए।
0: सोलह जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
3: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
4: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
3: आदाब। ये सामान यहाँ रख दीजिए।
4: अल्लाह अल्लाह।
3: शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
5: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
5: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
6: ये अखबार कहां गए?
5: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
7: अब थोड़ी देर आराम कर लो।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
8: जय हिंद,
9: जय हिंद,
8: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
4: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, इस समय ठीक 1:05 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आरजे किरण माला, इस समय आपके साथ। तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है, इंजॉय करिए इस गाने को।

इस समय ठीक 1:13 हुए हैं और कार्यक्रम हिट एंड हॉट की शुरुआत हो गई है। अभी जो गाना आपने सुना फिल्म आई मिलन की रात का ये गाना था और इसके संगीतकार थे समीर, और इस गाने को पसंद किया था पंकज मोहोड़ अमरावती से, और साथ ही भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, इनका पूरा परिवार इस गाने को पसंद किया था, और साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से भी इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, और इस गाने को सुनाने का मेरा मकसद यही था कि आज मशहूर संगीत कंपनी टी सीरीज़ के संस्थापक और जाने माने फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की पुण्यतिथि है, तो हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

इस समय ठीक 1:19 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट। यहाँ पर हमारे एक श्रोता हैं जिनका नाम है राजेंद्र परमार। वो लिखते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम दुकान पर रहकर सुनते हैं और साथ ही उनके आसपास बहुत सारे ग्राहक होते हैं, उनकी वजह से संदेश भेजने में विलम्ब होता है। कोई बात नहीं राजेंद्र जी, आप हमारा प्रोग्राम तो सुन रहे हैं, धन्यवाद। तो इसी तरह और भी हमारे साथी हैं, श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, या कहीं कोई महिलाएं होती हैं जो किचन में काम करते करते हेडफोन लगाकर हमें सुनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारे श्रोता हैं जिनका नाम है संतोष शेरवाले, ये भी हमें सुन रहे हैं, और दिग्दर्शन और कविता जी भी हमें सुन रही हैं मेरठ कैंट से, और साथ ही पंजाब से मिंटू पिंकी आरती लवली भी हमें सुन रही है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर। इस गाने को सुनना चाहते हैं अजय साखरे, और साथ ही हमारे बहुत सारे श्रोता हैं वो सभी इस गाने को सुनना चाहते हैं जो हमें मैसेज नहीं करते हैं लेकिन हमें सुनते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय ठीक 1:40 हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम हिट एंड हॉट को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इस गाने को पसंद किया है फिरोज सिंगनपुरिया जी ने।

1:47 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे श्रोता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और साथ ही हमारा रेडियो भी सुन रहे हैं, जैसे कि अविनाश जाधव मरोल सांगवी तसल गंगाखेड़ जिला परभणी से हमें सुन रहे हैं और साथ ही उन्होंने लिखा है कि वो इस समय खेत में काम कर रहे हैं। इसी तरह विजेंद्र घटोल अकोला से ये भी इस समय खेत में काम कर रहे हैं, यानी सोयाबीन की खेती कर रहे हैं और साथ ही हमें भी सुन रहे हैं, यानी हमारा प्यारा रेणु भी हमें सुन रहे हैं। और साथ ही एक और श्रोता है जो कि गणेश मगर काका शिंगाड़े और गोरखनाथ जी मुंगे, जी हाँ, ये पैठण से हमें सुन रहे हैं और वो भी इस समय खेत में काम कर रहे हैं और साथ ही रेडियो भी सुन रहे हैं। और एक हमारे श्रोता है संदीप अजमेर यवतमाल से हमें सुन रहे हैं और साथ ही आकांक्षा मनोज सिन्हा अहमदाबाद से हमें सुन रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। इसी तरह से बहुत सारे श्रोता है जो हमें सुनते हैं, जो बहुत सारे जो संदेश नहीं भेजते हैं लेकिन गाने सुनते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय सुन रहे हैं, जिनका नाम ले रही हूँ वो तो खुश होंगे, जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ वो दुखी होंगे, लेकिन दुखी मत होइए, गाने सुनते रहिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गाना, और इसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और वादा करके जाती हूँ कि कल सुबह मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी ठीक 9 बजे यानी 8:40 पर मैं आपसे फिर मिलूँगी कार्यक्रम मस्त मुंबई और नमस्ते भारत में। तो मिलिए ज़रूर कल, खुश रहिए, मस्त रहिए। सुनते हैं ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात की गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
5: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कॉन्सर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन व्हिच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को

0: के लिए जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेल सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेल सिंदारोव को हराकर पहली

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: म्यूजिकर्स में दोस्तों आपका स्वागत है। 5 बजकर ठीक 3 मिनट और 22 सेकंड हो गए और टिक टिक करती हुई घड़ी की का इशारा कर रही है कि भाई साहब 15 अगस्त आने वाला है। और आज की तारीख में चाहे आप कोई भी न्यूज़ उठा के देख लो, कोई भी टीवी शोज देख लो, या फिर किसी भी तरफ चले जाओ, अखबार ही कोई भी पन्ने को पलट के देख लो, हर जगह पर एक ही चीज़ लिखी हुई है, हर घर तिरंगा। पर क्या आपको हकीकत में पता है कि ध्वजा आरोहण और झंडे फहराने में क्या फ़र्क होता है, यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फ़र्क है? हम सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि झंडा फहराना क्या होता है और ध्वजा आरोहण क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने हमेशा झंडा लहराते हुए देखा होगा, लेकिन इन दोनों ही दिनों में झंडे का जो महत्व है बहुत अलग है, क्योंकि एक बार झंडा उठाया जाता है और एक बार झंडा फहराया जाता है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊंगा इस बड़े ही खूबसूरत के गीत के बाद में, जो होने वाला है स्वदेश से उदित नारायण साहब के आवाज़ में। बने रहिए 107.1 FM रेनबो पे मेरे साथ, जिस लड़के का नाम है केथ हांडा। लव यू जिंदगी में आज हम बात करने वाले हैं लव यू फ्लैग।

0: भारत का नागरिक होने के नाते 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर आइए मनाते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। हमारा तिरंगा जो देश का अभिमान और सम्मान है, चलिए अपने अपने घरों पर शान से लहराते हैं। हम अपना राष्ट्रध्वज अपने ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस से भी खरीद सकते हैं। शासन की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in से अधिक जानकारी प्राप्त करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक टू बर्ड्स, एक सुपर हिट गाने। और ये सुपर हिट गाने जो हैं वो हैं हमारे देश के कुछ ऐसे ख़ास मौक़ों से जुड़े हुए जो हमेशा हमारी आंखें नम कर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं उन बहादुरों की जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। बहुत जल्दी एक और खूबसूरत सा गीत आपके समक्ष आने जा रहा है और एक गीत है सोनू निगम जी की आवाज़ में और साथ में है रूप कुमार राठौर और उसके ठीक बाद वापस आके बात करते हैं ध्वजारोहण और झंडे फहराने में क्या फ़र्क है। क्योंकि आज की तारीख में मैं कहूँ हर आदमी ऐसे तो सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं भी था तब से ये जो है दिन जो है बहुत ही पावन दिन है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा दारमदार टिका हुआ है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इस स्वतंत्रता दिवस में जिस तरह से हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं और फिर जब बात आती है 26 जनवरी की, हम फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं यानी कि झंडे को फहराते हैं, इन दोनों ही चीज़ों में बहुत ही एक खूबसूरत सा अंतर है। और ये मैं ठीक इस गाने के बाद में आपसे कंटिन्यू करूँगा, इस बारे में जिक्र करूँगा और आपसे भी आपके विचार जानूँगा।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, भारत में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम बड़े गर्व के साथ तिरंगा फहराते हैं, और जो तिरंगा हम फहराते हैं उसे आल बोलचाल के अंदर हम झंडा फहराना कहते हैं। लेकिन तकनीकी और संवैधानिक रूप से इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? फ्लैग अनफर्लिंग, जिसे झंडा फहराना कहा जाता है, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन झंडा खंभे के ऊपर ही बंधा रहता है। इसे ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि केवल रस्सी खींचकर उसे खोल दिया जाता है और वो लहराने लगता है। इसे अंग्रेजी में अनफर्लिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत पहले से ही एक स्वतंत्र राष्ट्र था और अब अपना संविधान लागू कर एक गणराज्य बन रहा है। गणराज्य दिवस पर झंडा देश के

राष्ट्रपति फहराते हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और जहां तक बात है 15 अगस्त की, ये खूबसूरत सा जो दिन है, इस दिन पर प्रधानमंत्री जी झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाकर उसे फहराते हैं, जो गुलामी से आज़ादी का प्रतीक है। और इसी के साथ एक और खूबसूरत सा गीत आपके समक्ष आ रहा है चक दे इंडिया से। बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर ये खूबसूरत से शो के साथ, जिसका नाम है लव यू जिंदगी।

आपका दिल क्या देखने के लिए राजी है? वल 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक तरफ होने वाली है बंटवारा 1947 यानी कि 1947 जो है सनी पाजी की, और दूसरी तरफ है इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 यानी कि उनकी पहली फिल्म का सीक्वल। और ये दोनों फिल्में एक साथ बिग ऑफिस यानी कि बड़े बिग ऑफिस यानी कि बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी। अब 14 अगस्त के बाद में यूँ कह सकते हैं, जो 15 अगस्त है, ये दो दिन जो है काफ़ी अहम है। सैटरडे संडे का दिन है ये, और इन दो दिनों में जब छुट्टी वाले दिन मैं कह सकता हूँ एक तरह से कई लोग जो हैं वो मैं कह सकता हूँ संडे की छुट्टी मनाते हैं, लेकिन चांस की बात है जो इस बार का संडे है वो है 16 तारीख को। और जब ये फिल्में रिलीज हुई हैं तो एक ही साथ बॉक्स ऑफिस पे जब रिलीज हुई हैं तो क्लैश देखने वाला। एक तरफ आवारापन 2 यानी कि आवारापन यानी कि इमरान हाशमी का जो फैन फॉलोइंग बेस है वो है, और दूसरी तरफ है सनी पाजी की अपनी अलग ही गदर जो है फैन फॉलोइंग। एक तरफ कहा जाता है कि इमरान हाशमी की जो फिल्म है उसके गाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन जहाँ तक बात करूँ ये दोनों फिल्मों के बारे में, ये दोनों ही फिल्में जो हैं टीज़र में ट्रेलर में खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। आप कौन सी फिल्म देखने वाले हो? आपका क्या मानना है इस दिन? क्या करने वाले हो आप? क्या देखने के लिए राजी हो? आप ये चीज़ तय कर लेना, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर आपके सामने है, फिल्म की कास्ट आपके सामने है। एक तरफ मैं कह सकता हूँ जहाँ दिशा पटानी होंगी इमरान हाशमी के साथ में, वहीं पर शबाना आजमी जी, सनी देओल और प्रीति जिंटा जी होंगे बंटवारा 1947 में। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है बी पराग की आवाज़ में, देश तेरी मिट्टी।

वेलकम बैक दोस्तों, 5:50 हो चुके हैं और लव यू जिंदगी में आज आप सुन रहे हैं लव यू फ्लैग। जिस तरह से मैंने आपसे अभी बात करी कि फ्लैग होइस्टिंग में और उसके अलावा फ्लैग अनफर्लिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसी तरीके से मैं कहूँगा और भी खूबसूरत सी दो बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा बहुत जल्दी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है शंकर महादेवन जी की आवाज़ में एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके समक्ष हाजिर करने का, माँ तुझे सलाम। और इसके बाद एक और खूबसूरत सा ट्रैक आप सुनेंगे बॉर्डर से। बने रही है FM रेनबो 107.1 FM पर मेरे साथ जिस दोस्त का नाम है के थांडा।

भारत का नागरिक होने के नाते 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर आइए मनाते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। हमारा तिरंगा जो देश का अभिमान और सम्मान है, चलिए अपने अपने घरों पर शान से लहराते हैं। हम अपना राष्ट्रध्वज अपने ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस से भी खरीद सकते हैं। शासन की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in से अधिक जानकारी प्राप्त करें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: म्यूजिकली योर्स में दोस्तों आपका स्वागत है, यानी कि आपके अपने एफएम रेनबो में और एफएम रेनबो में अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है अंदाजे बयां। और आज अंदाजे बयां में आप सुनने वाले हैं बड़े ही खूबसूरत सी कविताएं। पहली कविता आपके समक्ष हाजिर कर रहा हूं, वो कहते हैं कि रास्ते में अंधेरा बहुत है तो क्या हुआ, एक छोटा सा दिया जलाना ही तो है, मंजिलें दूर हैं रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, तुझे बस एक कदम आगे बढ़ाना ही तो है, मुश्किलें सिर्फ इम्तिहान लेती हैं दोस्त, हार मानने के लिए नहीं होती है।

0: भारत का नागरिक होने के नाते 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर आइए मनाते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। हमारा तिरंगा जो देश का अभिमान और सम्मान है, चलिए अपने अपने घरों पर शान से लहराते हैं। हम अपना राष्ट्रध्वज अपने ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस से भी खरीद सकते हैं। शासन की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in से अधिक जानकारी प्राप्त करें।
1: यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई का सबसे पहला FM चैनल।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बचपन की उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिसने, आज वो बूढ़े हाथ कांपते हैं तन्हाई में। महंगे होटलों के खाने में वो स्वाद कहाँ है जो सुकून मिलता था माँ की सूखी कमाई में। आज घर जल्दी जाइएगा और अपने घर वालों के साथ वक्त बताइएगा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने, और सुपरहिट के साथ साथ दिल को छू जाने वाले गाने भी हैं। बड़े ही सूदिंग से गाने हैं और बड़ी ही सूदिंग सी आवाज़ है शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की। लुटेरे से खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना। इसमें मैं कह सकता हूँ कि विक्रांत मैसी ने एंट्री करी थी, और विक्रांत मैसी आज की तारीख में काफ़ी खूबसूरत काम कर रहे हैं, और इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक दोस्त का किरदार निभाया था, और वो दोस्त बने थे रणवीर सिंह के। और देखिए धीरे धीरे उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है, और अब वो बतौर फिल्मों में लीड कलाकार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में एक बड़ी ही खूबसूरत सी कविता आपके समक्ष मैं हाजिर कर रहा हूँ। वो क्या कहते हैं कि गिरना बुरी बात नहीं है, पर गिरकर ना उठना बुरी बात है। और ये कविता आपके हौसलों को सलाम करती हुई है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि आप भी लगे रहिए, ज़िंदगी का पता नहीं किस और करवट बदल रहे और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 6:54 हो चुके हैं। 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद एक और खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज होगा जिसका नाम है हम तुम, जिसमें आज आप सुनने वाले हैं बॉलीवुड यानी कि भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा की कुछ ऐसे ट्रिवियास जो शायद काफ़ी बेहतरीन हो, क्योंकि काफ़ी सारी जो फिल्में हैं उनके रीमेक्स आने वाले हैं और उन रीमेक के साथ में कुछ पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जानकर। और उसके साथ में कुछ कल्ट क्लासिक का दौर भी होने वाला है और उसके साथ में जो लोग आज तक FM रेनबो पर अपनी कोई भी रिक्वेस्ट साझा नहीं कर पाए, यानी कि अपने गाने की या फिर अपने लिखी हुई कुछ शायरी की पंक्तियों की, तो वो रिक्वेस्ट भी वो लोग साझा कर सकते हैं जिन्होंने आज से पहले कभी भी कोई रिक्वेस्ट FM रेनबो पर साझा नहीं की है। फिलहाल वक्त हो चला है इस घंटे के आखिरी ट्रैक का और वो आपके समक्ष बहुत जल्दी हाजिर होगा। उससे पहले एक बड़ी ही खूबसूरत सी कुछ पंक्तियां हैं इस शो से जुड़ी हुई जो मैं आपके समक्ष हाजिर करता हूं। वो कहते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, इसी सोच में उम्र तमाम हुई। कल करेंगे परसों करेंगे, इस सोच में उम्र तमाम हुई। अभी तो सुबह हुई थी, देखो फिर से शाम हुई। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है दोस्त, संभल जाओ इससे पहले कि जिंदगी की कहानी तमाम हुई। अंदाज़े बयां को यहीं पे थामते हैं और अगले घंटे थिएटर का पर्दा उठेगा, फिर मिलेंगे बॉलीवुड ट्रिविया के साथ में। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है और ये ट्रैक है मोहित चौहान की आवाज़ में।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक 1।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने कार्यक्रम हम तुम में। और फिलहाल इस खूबसूरत फिल्म के साथ में एक और खूबसूरत फिल्म मैंने कहा एक रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम बंटवारा 1947 यानी कि 1947, जिसमें है शबाना आज़मी जी, सनी देओल पाजी और आमिर खान प्रोडक्शन में बन रही है फिल्म। 14 अगस्त को ये दोनों ही फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने वाली हैं। अगर बात करूँ मैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब की दुनिया में इस ट्रेलर पर यानी कि जो बंटवारा 1947 यानी कि 1947 है, उसके जो लाइक्स हैं वो है 2,07,000। और अगर मैं बात करूं आवारापन के, तो वो है 1,99,000 लाइक्स। मैं लाइक्स की बात इसलिए करता हूं कि व्यूज़ में कई बार जो है लाइक से पता चलता है कि कितने लोग जो हैं कंसीडर कर रहे हैं फिल्म को थिएटर तक जाने के लिए, क्योंकि एक तरफ हैं सनी पाजी की फिल्म और दूसरी तरफ है इमरान हाशमी जी की फिल्म। इन दोनों फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है और वो है शबाना आज़मी जी, जो दोनों ही फिल्मों के अंदर हैं। कोई भी फिल्म चले लेकिन दोनों फिल्मों के हिस्से में वो हैं। फिलहाल आपके समक्ष एक फिल्म और आए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म जब आवारा 2007 में रिलीज़ हुई थी तो

पाकिस्तान में इसने ज़बरदस्त जो है सक्सेस हासिल की थी और 8 जो है करोड़ रुपए करीब लगभग कमाया था। और इमरान हाशमी ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी जो है उन्हें अक्लेम किया गया था कि भाई ऐसा कलाकार इस तरह के रोल में अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ एक ही है। ये फिल्म में जो आवारापन है, ये एक कोरियन फिल्म है, अ बिटर स्वीट लाइफ, जो 2005 में रिलीज़ हुई थी, उस कोरियन फिल्म का रीमेक है। फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि फिल्म तो है, 14 अगस्त को पता चलेगा कि कौन सी फिल्म जो है उसने बाजी मारी है। अगला ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है, ये 90s की फिल्म से होने वाला है और ये फिल्म के बारे में आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन इसके साथ में मैंने आपसे कहा था कि क्लासिक किल्ट जो हैं उनके बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगा। और वो बात ये है कि आज की तारीख में अब कई सारी फिल्में हैं जिनका अब रीमेक जो है आने जा रहा है, उसमें से कौन कौन सी फिल्में हैं जिनके रीमेक आप देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो। ये कहूँगा कि FM रेनबो की जो ये बात है, ये बात मेरे ख्याल से सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि गॉसिप के गलियारों में अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब की क्लासिक फिल्म शक्ति और एंग्री यंग मैन वाली दीवार के मॉडर्न रीमेक को लेकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर्स जो हैं स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। और आज के दौर में जो एक्टर्स हैं, अमित जी के एंग्री यंग मैन वाले किरदार को दोबारा पर्दे पर उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपको क्या लगता है कि अगर आज के दौर में विजय का रोल कौन बेहतर निभा सकता है, रणवीर सिंह या रणबीर कपूर या फिर और कोई कलाकार जिन्हें आप देख पाते हैं आने वाली अगर फिल्म दीवार का रीमेक बनता है तो उसमें कौन होने चाहिए। फिलहाल अगला ट्रैक मैं आपको 90 से सुना रहा हूँ, बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म है, अगर इसका भी रीमेक आए तो आप किसे देखना चाहेंगे। 8657 6610 71 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 8657 6610 71। अगर आपने आज से पहले कभी भी कोई रिक्वेस्ट यानी कि गाने से जुड़ी हुई नहीं साझा की है तो आप FM रेनबो पे आज ही सेंड करिए और अपना नाम लिख के ज़रूर भेजिए, वो गाना किसको सुनाना चाहते हैं उनका नाम लिख के ज़रूर भेजिए और कहाँ से आप ये शो सुन रहे हैं। 8657 6610 71 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज में जाने के बाद में सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट टाइम FM रेनबो और उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट।

वेलकम बैक दोस्तों, बड़े खूबसूरत ट्रैक आपने सुना ये। अरे यारो मेरे प्यारो, उदित नारायण साहब की आवाज़ में और साथ में हैं विजेता पंडित जी। 7:36 हो चुके हैं। जैसे आपसे बात की गई थी, दीवार का अगर रीमेक बनता है तो आप बतौर हीरो, यानी कि जो उसमें एंग्री यंग मैन का रोल था, उसमें किसे देखना चाहेंगे? तो काफ़ी सारे जवाब आए हैं, जिसमें अर्जुन है विरार से, पौलमी हैं बैंड्रा से, राजीव हैं यारी रोड से, राहुल हैं जो शो को उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं, और साथ में नरेंद्र हैं जो इसे भोपाल से सुन रहे हैं, और भी बहुत सारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने एक ही नाम लिया है उमन, कि वो अजय देवगन को देखना चाहते हैं उस रोल में। और इसमें कुछ लोग हैं जैसे कि जो कई सारे लोग बिहार से सुन रहे हैं, झारखंड से सुन रहे हैं इस शो को इस वक्त, और उनकी राय ये है कि अगर वो इस शो को, यानी कि जो दीवार नाम की फिल्म, अगर इसमें बतौर हीरो देखना चाहेंगे, तो उसमें कई लोगों ने कहा है कि वो रणवीर सिंह को उसमें देखना चाहते हैं। फिलहाल अगली रिक्वेस्ट जो मेरे पास में आई है वो आई है दिल्ली से अमृता की, और वो गाना सुनना चाहती हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उन्होंने मैसेज में मेंशन किया है कि उनकी भी बहुत जल्द मैरिज होने वाली है, और ये गाना वो अपने होने वाले हबी यानी हनी त्रिहान को जो है डेडिकेट करना चाहती हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल बड़ा ही खूबसूरत सा आपने गीत सुना, लेकिन अब वक्त आ चला है इस घंटे के दो आखिरी गीतों का, और ये दो गीत बड़े ही बेहतरीन से होने वाले हैं। और इसकी रिक्वेस्ट जो आई है मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द किन्होंने भेजी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं बात करना चाहूँगा आपसे, जैसे बात चल रही है आज उन फिल्मों की जिनके अगर मान के चलिए रीमेक बनते हैं या यूँ कहूँ कि सीक्वल बनते हैं, तो कौन कौन सी फिल्में हो सकती हैं। शक्ति और दीवार के बारे में हमने बात करी, लेकिन 90 के दशक में अगर हम बात करें सिर्फ एक्शन की नहीं, 90 के दशक में सदाबहार कॉमेडी फिल्में जैसे अंदाज अपना अपना और गोविंदा जी की फिल्में, दूल्हे राजा के रीमेक, हीरो नंबर वन के जो रीमेक्स हैं उनके सीक्वल्स की चर्चा जोर पर है। खबर है कि वरुण धवन या कार्तिक आर्यन जैसे नए दौर के सितारे इन किरदारों में नजर आ सकते हैं, लेकिन बाबा अमर और प्रेम, सलमान और आमिर की वो कॉमिक टाइमिंग दोबारा मैच करनी टिड़खीर होगी, है कि नहीं है, है ना। फिलहाल दो ट्रैक आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक तो हीरो नंबर वन से होने वाला

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या

0: और खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और अपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
4: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा

0: बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल

राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सल्यूट करना चाहेंगे रफ़ी साहब को उनकी मखमली आवाज़ के लिए। दोस्तों कहते हैं हर रात की अपनी एक आवाज़ होती है और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। रात के इस पहर में जब आसपास की आवाज़ें धीमी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तब संगीत की एक धीमी सी धुन भी पूरी दुनिया को अपने करीब महसूस करा सकती है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ आपका स्वागत है। यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता और रंग महफिल शुरू हो चुका है और 12 बजे तक मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा। और आज की जो महफिल है उसको हमने बनाया है थोड़ा सा ख़ास, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे संगीत के अलग अलग रंग, नफासत से भरी गज़लें भी सुनेंगे आप और दिल को छूने वाले गीत भी होंगे और रूह तक उतरने वाली एक बहुत प्यारी सी कव्वाली भी सुनवाऊंगी। यानी एक ऐसा खूबसूरत म्यूज़िकल कैप्सूल होगा जिसमें हर सुर अपनी रात में अपना एक अलग अंदाज, एक अलग रंग खोलेगा और आपकी इस रात को बना देगा और भी शानदार। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए प्लीज़। अपनी पसंद की कोई जगह चुन लीजिए जहाँ पर आप सुकून से बैठकर ये प्रोग्राम सुनना चाहें। और अगर कोई पुरानी याद इस वक्त आपके साथ है तो उसे भी आने दीजिए इस महफिल में, क्योंकि रंगे महफिल में आज रात सिर्फ गाने नहीं बजेंगे, सुरों के बहाने कुछ दिल की बातें भी होंगी।

0: की राह में मजबूर हो गए। वेल दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो भीतर कहीं उतर जाती हैं हमारे। और इस गजल में भी शायद हम सबको अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मोड़ जरूर दिखाई दिया होगा, वो रास्ते जहां हम अपनी मर्जी से नहीं हालातों के कहने पर मुड़ गए थे। कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी भी रह जाती हैं, और कुछ फैसले ऐसे थे जिन्हें दिल ने कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया। मगर जिंदगी की खूबसूरती भी तो यही है दोस्तों, कि हर ठहराव के बाद कोई नया रास्ता, कोई नया सवेरा दिखाई देता है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता, ये बात याद रखिए। और हर अधूरी कहानी का मतलब ये नहीं कि उसका कोई खूबसूरत हिस्सा था ही नहीं। शायद इसलिए कुछ नगमे हमें उदास करने नहीं, बल्कि ये याद दिलाने आते हैं कि हम टूट कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी मैं चित्रा सिंह का ये गाना, ये गज़ल सुनती हूँ ना, तो मुझे भी मतलब सैड हो जाती हूँ, आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवेरा नहीं होगा, होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा।
1: लाज शायर है

क्या बात है, क्या बात है, वाओ। सैल्यूट करना चाहेंगे किशोरदा को अपने स्टूडियो से, दिल लाज शायर है। और जब किशोर कुमार की आवाज़ में ये जज्बात उभरते हैं ना, तो लगता है जैसे दिल ने आज सचमुच से कलम उठा ली है और दिल लिखना चाहता है। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, मगर कोई गीत उन्हें इतनी आसानी से

कह देता है। ऐसा लगता है अरे ये तो बिल्कुल मेरे दिल की बात है। किशोरदा की आवाज़ की यही तो खासियत है दोस्तों, उसमें मोहब्बत भी है, शरारत भी है, एक हल्की सी उदासी, और सबसे बढ़कर वो अपनापन जो बरसों बाद भी वैसा ही महसूस होता है। वेल, टाइम हो गया है ठीक 11:22, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, ये है 102.6 FM रेनबो, मैं हूँ गीता। मैसेज करके बताते रहिएगा ना, आई होप ये वाली प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यस, प्लीज डू राइट इन टू feedback@rainbow@gmail.com राइट नाउ, मैसेजेस भी करिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं। मन की परतें

0: खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

हाँ जी, मुझे भी लगता है कि आप भी इशारों को समझ गए होंगे और रंगे महफिल धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचता हुआ प्रोग्राम आदाब। उफ, इस रात की तन्हाई में गजल दिखाई दिए, यूं बहुत ही पसंद आई। ये गीत संगीत गजलें ना होती तो जिंदगी में बहुत ही सूनापन होता। ये लिखा है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान ने। थैंक यू सो मच फारूक साहब जी।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 11:35। प्रोग्राम रंगे महफिल, यह है 102.6 FM रेनबो। मैं गीता।

तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं थैंक्स गीता मैम, प्लीज कन्वे माय मैसेज टू माय हार्ट आकाश, प्लीज टेक फूड एंड रेस्ट एट द राइट टाइम ओनली फॉर मी, आई एम ऑल राइट। तो अगर आकाश जी आप सुन रहे हैं तो तुम्पा का मैसेज आप ध्यान से सुन लीजिए, टाइम पे खाना खाइए और रेस्ट कीजिए।

होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, क्या लिरिक्स हैं, क्या शब्द हैं, और उस पर मखमली आवाज हमारे जगजीत सिंह साहब की। कुछ नगमे कुछ गजलें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की जो खामोशी है उसको आवाज दे दी हो। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ इस तरह तेरी पलकों में रह जाऊं, गौर फरमाइएगा, कुछ इस तरह तेरी पलकों में रह जाऊं जैसे कोई ख्वाब आंखों में ठहर जाए, तुम पुकारो तो लबों पर मुस्कान आ जाए, तुम खामोश रहो तो दिल फिर भी तुम्हें सुन जाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें मैंने कही हैं, और शायद मोहब्बत भी तो इसी का नाम है, किसी के पास होकर भी उसे महसूस करना, दूर होकर भी हर पल उसके करीब रहना, और बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों से एक दूसरे की पूरी कहानी पढ़ लेना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आंखें हमारी पढ़ लेंगी कहानी। वाकई में कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस एक एहसास होता है जो दिल में रहता है, बिल्कुल किसी प्यारे से नगमे की तरह।

अरुण कुमार रावत हैदराबाद से जुड़े हैं, जो कि ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर हैं, लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत आपने कव्वाली सुनवाई, राज की बात कह दूं तो, स्टे ब्लेस्ड मिस गीता। थैंक यू सो मच अरुण कुमार रावत जी आपका मैसेज करने के लिए।

मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मैंने तो अपने दिल की बात बता दी है। कभी कभी एक सवाल ही दोस्तों इतना खूबसूरत होता है कि जवाब देने को दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। और आखिर दिल में क्या है, कोई राज है, कोई ख्वाहिश, किसी की याद, या फिर वो नाम जिसे हम दुनिया से तो छुपा लेते हैं मगर अपने दिल से कभी भी नहीं छुपा पाते। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, दिल की अपनी कोई भाषा ही नहीं होती और फिर भी वो बहुत कुछ कह देता है, कभी आंखों से, कभी मुस्कुराहट से, और कभी किसी ऐसे गीत के जरिए जिसे सुनते ही लगता है इसने हमारे दिल की बात कह दी।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं। इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं। मधुर वाणी, मोहक प्रस्तुति और मन भावन गजल, मस्त कार्यक्रम। थैंक यू सो मच।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 11:54। बिल्कुल भी टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। मैं हूँ गीता और आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम रंगे महफिल। आधा है चंद्रमा, रात आधी, मगर ख्वाहिश है कि अगली महफिल में हम आपसे मिलें तो चांद भी पूरा हो और हमारी बातें भी पूरी हो। तब तक अपनी रात को मुस्कुराहट के हवाले कीजिए और संगीत को अपने पास रखिए। गुड नाइट, और खूबसूरत ख्वाबों के साथ फिर मिलूंगी एक नई महफिल में।

अभी सुना आपने रंगे महफिल गीता जी के साथ और आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अब बदल चुका है कैलेंडर और ठीक हमेशा की तरह 00:00 स्क्रीन पर देखने लगा, यानी वक्त हो चला है 00:00 का। लेकिन उससे पहले पेश है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके साथ ही साथ अब आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, तो तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम जीरो और शो मेरे यानी रजत के साथ।

0: स्वागत एक बार फिर से आप सभी का इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जीरो आवर शो आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। लोग आप लोग आने लगे हैं, सुनने लगे हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज मिला था इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ ही दूं। जीरो आवर्स की हर रात आती है और दिन भर की थकान जीरो आवर्स के गीतों और आपकी खूबसूरत बातों से जैसे कहीं खो जाती है। रात की खामोशी में आपके गीत सुकून देते हैं और आपकी बातें दिल को एक अलग ही एहसास से भर देती हैं। अमित आचल साहब है ये सासाराम बिहार से। ये है हमारी ऐप का कमाल कि देश और विदेश के हर कोने हर हिस्से से लोग जुड़ते हैं। आपका स्वागत है अमित भाई और बहुत अच्छी बात के लिए भी आपका आभार। अफशा खानम जी ने भी स्वागत किया, आपको भी बराबर स्वागत मिले अफशा जी, आप भी हमारे नियमित श्रोता हैं। एक हैप्पी टू हियर यू अगेन ऑन FM रेनबो, ये लिखते हैं MR के साहब एम राजकुमार जी त्रिची तमिलनाडु से। आप भी देर ना लगाए अगर हैं तो मिल जाइए, बात करते हैं हम मैसेज के जरिए से, गानों के जरिए से। गीत संगीत के इस खूबसूरत प्रोग्राम में 90s का कलेक्शन लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ। वैसे तो हर तरह के गाने हम चलाने की कोशिश करते हैं जीरो आवर्स में, लेकिन कोशिश करेंगे कि 90s को भी जगह दी जाए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, तहे दिल स्वागत।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस।

0: तरह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: वक्त हो चला है 12:50 लगभग और करीब करीब आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं कार्यक्रम के, इसीलिए मुझे आना पड़ा आपको ये बताने कि आने वाले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और बहरहाल तो ये लंबी फहरिस्त है आज से, अभी से इन प्रोग्राम्स की, जैसे जैसे घड़ियां बीत रही हैं कैलेंडर का ये दिन भी लगभग 49:50 पुराना हो चला है। फिलहाल इजाज़त चाहूँगा एक आखिरी पेशकश के बाद, फिर आप जुड़ेंगे हमारे साथ अगले कार्यक्रम सुहानी रात में आकाशवाणी 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ, हम उपलब्ध हैं अब न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से जुड़ने के लिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद, लेकिन उससे पहले सुहानी रात में हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल,

एफएम मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र में के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। समय हो चला है 1:03 और 25 सेकंड का, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 1:38 और 16 सेकंड कार्यक्रम सुहानी रात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

सुहानी रात में अभी आप जुड़े हुए थे हमारे साथ, ठीक 2 बज चुके हैं और वक्त है अब आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर इस घंटे की मुख्य सुर्खियों का। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 2 दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर जुड़े हैं आप हमारे साथ। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं और आप भी उपलब्ध हैं, तो सुनते रहे हमारा कार्यक्रम। अब शुरू होने वाला है भुलाए ना बने, मेरे यानी रजत के साथ कुछ ही क्षणों में होते हैं हाजिर।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: क्या है बब्बई, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

एफएम मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाले विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 3:03 और 20 सेकंड का, और श्रोताओं आइए सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, 3:22 और 5 सेकंड, कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
4: नंबर अननोन यानी

0: परिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा।
3: अच्छा,
2: डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
0: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे संसद में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। आज लाल किले के आसपास सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सारेगामा मेरे यानी रजत के साथ इसी फ्रीक्वेंसी पर, और इसके अलावा आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो थोड़ी देर में प्रस्तुत है सारेगामा आकाशवाणी रेनबो 102.6।

श्रोता सुन रहे थे अभी मिडनाइट मेलोडीज आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर

0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।